पौड़ी सबको आख्या अपना जिस नाही सोचन कड़ी है, कीता आपू अपना पही लेखा संडी है, जा रहना नहीं है जगता कायद गर्भ हंडी है, मंदा किसा नाखी है पढ़ करे हो बुझिए, मूर्ख है नाल न लुझिए, मूर्ख

ओड़ी आपे ही करना क्यो कल आपे ही तय तारी है। देखे किता अपना दर कची पकी सारी है। जो आया सो चलसी सबको आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों

औड़ी नानक अंतना जापनी हरता के परावार आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरियां तुरी चरे बसे आप कराए करे अब हो कैसे हो करी पुकार

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत किह अचल मूरत अनभउ प्रकाश।

अमितोज कह जय, कोट इंद्र इंद्राण साहि साहाण गण जय, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत, त्व सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत। जय जयकार जास जग अंदर, मंदर भाग जुगत सेव रहता, गुर पूरा पायो बड भागी, लेव लागी मेदन पर सहता। पै पंजन पर पीर निवारण, कल सहार तोहि जस बकता, कोल सोढ़ी गुर रामदास तान, धर्म तुजा अर्जुन हर भगता। नानक सावण जी वसै, चहो ओ माहा होई, नागा मिर्गा मच्छियां रसिया कर तन होई। नानक सावण जी वसै, चहो विछोड़ा होई, गाई पुत्ता निरतना पंथी चाकर होई। नानक बिजुलिया चमकन कुरन कटा अत कालिया, बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सोहंदिया। जल थल नीर परे शीतल पवन चुलार दे, सेजड़िया सोइन हीरे लाल जड़ंदिया। सुभर कपड़ भोग नानक पिरी विहूणी तत्तिया, ऊनव ऊनव आया

अंतकै सो माने सदा रली। क्या उठ उठ देखो बपड़ी, इस मेघे हाथ किश नाहि। जिन एहो मेघ पठाया, तिस

प्रिया अहनेस सहज सुभाय, दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सहु कुर सहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते साह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया, साबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दसाहु, जिस पास

अपना आप जय। सर्व कला भरपूर जिस जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिन बताओ। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत।

जाइए तेरा अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातार। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई।

संजोगी मेल, जिसनो तू जाना ये सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाण, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोय, तू कर कर वेख जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तेत सरवरड पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पांक जो मोह पग नहीं चाल, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेत समूढ़ मन, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्राणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाहीं विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दिहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काज तिर कित न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पबजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ द मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर द करिय, सब बैरन को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के।

पट पट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब अकरख करत हो कब हों, तुम मैं मिलत देह धर सब हों। जेते बदन सृष्ट सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जीते उठवाति उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन

सहाय, दोष्ट दोख ते लिहो बचाय। सवैय पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। ओम राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। ओम सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जाने। ओम श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहे ओ सब।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सवना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जैस दिया इह वडियाइयां। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित।

सोत अपराध करत है जेते जननी चीतना राखस तेते रामैया हों बारक तेरा काहे न खंडस अवगण मेरा जे अत करोप करे कर ताया ता पी चीतना राखस माया चिंत पवन मन पर्यो हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु निसतारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सत गुर का दर्शन पाए जियो दर्शन प्यासी दिन सुरात चित बहु अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुकह टल गुर सेवी एहनस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहां दे जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहु सजन सचा पातशाह सिर सहां दे जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी

हमें अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत धारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज।

जिस पास बैठिया सोही सबनांदा सज्जन सच्चा पात साहु सिर सांदा जिस पास बैठिया सोही सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी श्लोक महला तीजा सेखा चौ चक्या चौवाया एहो मन इकत कर आण एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सेखा चौ चक्या चौवाया एहो मन इकत कर आण एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगे टह पौ सब किश जाने जान आसा मनसा जलाए तू होए रहो मेहमान सतगुर कै भाणे पी चलै तां दरग है पाव है मान नानक जे नाम ना चेतनी तिन तिग पहनण तिग खाण महला तीजा हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए नानक गुरमुख हर गुण रवै गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली देह सवारी काड पैदी भगत कर हर पाठ लगा अधकाई बहु बहु बिद पात कर

सो भुज एहो बबेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सो बुझै एहो बबेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा

0: सोगी महले पहले के लिखे कुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपनी दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतन लगी बार महला दूजा जे सौ चंद उगवे सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदिया गुर बिन को
1: रंदा नानक गुरु ना चेतनी माने अपने सुचेत छुट्टे दिल बुआर जी सुनिए अंदर खेत खेत अंदर छुट्टियां गाओ नानक सोना हलिए बुलिए बप्पा।

0: सच्ची तेरी शिव सच्ची सलाहा, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच निकच।
1: वड़ी वड़ियाई जा पुछना।

श्लोक मोहला पेला पुरखा बिरखा तीर्थ तटा मेगा खेता दीपालो मंडला खंडावर पंडा अंडू जरी तू पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नान जंतु पाए कैसा माले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिह जोहारी स्वस्थ से।

लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या करम सच्चा निशान बौड़ी सच्चा साहिब देख जिन सचो सच वरताया जिस दिन मिले सच ना तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच।

0: महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक देखे एक गल होर हो में चखना चा
1: पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सहोवे जिया अपना किया।

0: अनमल खाई सिरछाई पाई मूर्खन दे पत गुवाई विण नामे की थाए ना पाई रहे बेबाड़ी मड़ी मसानिया दना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन मसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे तेने केवल
1: मैं चाहता जलाए पौड़ी पगत।

कसनहार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार, कूड़ मियाँ कूड़ भी बिखा पोहे खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा।

पौड़ी दान मेंढा तली खाक जय मिले तमस्त कलाई है। कूड़ा लालच छड़िया हो एक मन लख त्याई है। फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए। जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ ना दी पाइए। मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।

0: दियो बीज बदला के अब गुग बेदा जे को तो गुरुति हुरत होए नानक पाए बारा कोरे रंग न सोए पैवज घूम चढ़ाइए सरूपतन होए नानक भक्ति जे रपे सूड़े कूड़े सोए ना कोए
1: भलो बेला लभ पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम निम सब पुछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित एक मधु जस संजय करे प्यार।

पांच भूत वास कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास सबिद मान्यो मान तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुर राम।

कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सरवणे सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन मानिक करे ज्ञान गुर कहो बिचारे काठो सिरखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया से पास प्रेत सुर नर पए जाम गुरु होए वल तने क्या गर्व दीजे जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए वल नाम गुरु होए वल ध्यान ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर जो गुरु गुरु अहनस जपे दास पट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन

सम्राट गुरु सिर हाथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान।

0: स्पर्श करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।
1: अब रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख पारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसाज सुदामा अपदा ते राखिया गनका परत पुरे तह काज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज।
2: चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जप नाम नव नित अप रसन अह निस रस सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइया गुर मुख त्याइया अन मार्ग तजो पजो हर ज्ञानियो।

सुखहु टल गुर सेवियन अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म।

पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सल पूज भगत समादंग मुख चूड़ विवखण सारंग त्रैपाल त्यहाल विचारंग गलमाला तिलक लाटंग दोय धोती वस्त्र पाटंग जय जानस ब्रह्मं करमं सभो कर निश्चय करमं ओ नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु बाट।